0: माय शक्ति, आज पहली बार तुमने काम की बात की है।
1: Education. They going one